0: मैंने तो आज भी इसकी खूबसूरती में आपको दिखा देता हूँ। ये कितना प्यारा है, प्यारी चीज है, भले एक तार का है लेकिन कितनी प्यारी चीज है। पहले तो आपको इसकी खूबसूरती में दिखा देता हूँ। ये हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे,
1: आप हमारे हजरत बिलाल थे, हजरत बिलाल सैयद मोदी, आप उनकी मंगनी के अंदर गए तो आप सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह। सरकार बोले आप क्या, तो बड़ा प्यारा बाजा। तो आप सरकार बोलते कि क्या आपको बजाते आता है, बिलाल को बुला के? बेशक बोले बिलाल। बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजा जाता है। तो बोले कैसे बजाते हैं? तो बोले दिखा। बोले तो क्या बोलता है, बोले मुझे सुना। तो फिर बाजा आपने, आप सरकार ने आप बाजा बजाया। तो फिर बाजा देखो उसकी खूबसूरत क्या बोलता है। तो पहले ही आपने बजाया,

जब आप सरकार का उनसे मुबारक था तो फिर सीधी लोगों ने मिलकर ने भी कह के चलो अब सीधी लोगों के साथ में उस टाइम पे बहुत ऐसे ऐसे खप सब सब सीधी है सब मस्त सीधी को देख के इंसान डर जावे कि कैसा सीधी हाँ लेकिन अभी क्या है।